हम बैठे थे, सबका नाम लिया, सबने कहा बाबा हम खड़े हैं। तो उन्होंने कहा फिर दुकान पे कौन बैठे, दुकान पे कौन बैठा हुआ अगर तुम यहाँ खड़े हो सारे। तो उसको मरते वक्त भी अपनी दुकान की पड़ी हुई। इंसान जो शख्सियत बनाता है मरते वक्त वैसे ही होता। मैं आज करता रहता हूँ, मैंने बिस्तर मर्ग पर मरने से चंद लम्हे पहले गालियाँ देते हुए देखा है, माँ बहन की गालियाँ देते देखा लोगों को, जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं देखा बाज लोगों। मर रहा है नौकरों को गालियाँ दे रहा, बेटों को गालियाँ दे रहा, बीवी को गालियाँ दे रहा, हेडों पर खड़े हो। ऐसे अफराद भी जो बनाया अपने आखिरत में, आखिर जब आखिरी वक्त आता है फिर इंसान चेंज नहीं होता, फिर वही शख्सियत, वो इंसान वही काम करता है।

बाज लोगों मर रहा है, नौकरों को गालियां दे रहा है, बेटों को गालियां दे रहा है, बीवी को गालियां दे रहा है, हेडों पे खड़े हो ऐसे अफराद भी जो बनाया आपने आखिरत में, आखिर जब आखिरी वक्त आता है फिर इंसान चेंज नहीं होता, फिर वही शख्सियत, वो इंसान वही काम करता। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त आया, उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों से कहा मेरे बाद किसको किसकी इबादत करोगे, सब ने कहा हम उस माबूद की इबादत करेंगे जो आपका और आपके आबाओ अजदाद इब्राहिम इस्माइल और इसहाक का माबूद है, इलाहन वाहिदन जो अकेला माबूद है, यकता माबूद है, वह नहनु लहू मुस्लिमून और हम उसके आगे मुस्लिमून, मुस्लिमून यानी सर तस्लीम हमारा उसके आगे खम है, हम उसी के आगे झुकते हैं। तिल का उम्मतुन कद खलत फॉर्मूला, कुछ लोगों ने कुछ कौमें जब इनहराफ करती है अपने दीन में क्या बना लेती हैं, मसलन ईसाइयों ने क्या अकीदा बनाया, हजरत ईसा ने जो बर्दाश्त किया है उसकी वजह से हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह को दुश्मनी थी हजरत ईसा से और तुम अल्लाह के लाडले हो, क्योंकि हजरत ईसा को इतनी मार पड़ी है उनके जख्मों से हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे। अजीब गरीब लगवियात, और ये फिर मुसलमानों में भी बाज जगहों पर पेनिट्रेट कर गई, बस उनकी वजह से हम बख्शे जाएंगे, उनको जो मसलन उनकी वजह से हमारे, ये गलत है, ये इनहराफ है, ये कुरान की आयत इसको क्रॉस लगाती है, गलत है ये, सुनिए तवज्जो फरमाइए। तिल्का उम्मतुन कद खलत, वो उम्मत थी जो गुजर गई, यानी जिनके मैं तुम्हें बातें बता रहा हूं वो अपने जमाने में जब थे वो एक उम्मत थी, गिरोह था जो गुजर गए। लहा मा कसबत, उनके लिए वही है जो उन्होंने कस्ब किया था, जो उन्होंने अमल किए वो उनके लिए। वलकुम मा कसब तुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने करना, ना कि जो उन्होंने किया तुम अपने अकाउंट में भी खाता खुलवा लो, नहीं उधर से कोई नहीं, हाँ उनकी तालीमात पर अगर अमल किया तो फिर तो ठीक है, करना तुमने खुद है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सअ, फरमाया लहा मा कसबत, जो उन्होंने किया था वो उनके लिए। वलकुम मा कसब तुम, तुम्हारे लिए वो जो तुम कसब करोगे। वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, जो वो किया करते थे तुमसे नहीं पूछा जाएगा, यानी ये दोनों डायरेक्शन की बात है कि अगर कोई कहे वो कितने बुरे थे, अल्लाह कहता तुम अपने आप को संभालो, जो उन्होंने किया था तुमसे मैं नहीं पूछूंगा, इसी तरह जो उन्होंने अच्छाई की थी उसका फायदा तुम्हें, जिसने जो कस्ब किया है उसके लिए वही है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, नहीं है इंसान के लिए मगर वो जिसकी वो कोशिश कर, जो उसने खुद कोशिश की है अल्लाह के पास उसी का अजर है। वकालू कूनु हूदन औ नसारा तहतदू, और ये लोग कहते हैं यहूदी बन जाओ या ईसाई बन जाओ तो हिदायत पा जाओ, यानी यहूदियों की डिमांड क्या है, यहूदी बनो, ईसाइयों की डिमांड क्या है, ईसाई बनो, हर कोई कह रहे हमारे जैसे बनो तो हिदायत पाओगे, हमारे ग्रुप पे आ जाओ तो हिदायत पाओगे। कुल, ए रसूल आप इनसे कहिए, बल बल यानी बल्कि, तुम्हारी बात नहीं बल्कि ये बात, क्या मिल्लत इब्राहिम हनीफन, बल्कि इब्राहिम की रविश, इब्राहिम का रास्ता, इब्राहिम का आइन, और वो क्या है हनीफन, और वो भी किस तरह, हनीफ किसे कहते हैं, जो हर बातिल से और अल्लाह की नाफरमानी से बेजार हो और हक की तरफ रागिब, इस हालत को कहते हैं हनीफ, ऐसे बंदे को कहते हैं हनीफ, बल्कि मिल्लत इब्राहिम हनीफ बनकर हक की तरफ रगबत बातिल से बेजारी। व माँ, और फिर हिट भी किया अल्लाह ने इन पर, व माँ कान मिन अल मुशरिकीन, तुम तो शिर्क करते फिर तो अल्लाह के साथ, इब्राहिम मुशरिक था, कि क्यों इसलिए कह रहे, इसलिए कि यहूदी कहते थे इब्राहिम यहूदी थे, ईसाई कहते थे इब्राहिम ईसाई थे, जैसे आजकल अलामा इकबाल को शिया कहते हैं शिया थे, सुनी कहते सुनी थे, ठीक है ना, जो बड़ी शख्सियत होती है हर कोई कहता है हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि वो शख्सियत बड़ी होती है उसने सबके लिए बातें की होती हैं, तो हर एक उसकी अपने वाली बातें ले कहता है कि ये हमारे जैसा हो गया, खींच रहे होते। इसी तरह यहूदी क्या कहते थे कि हज़रत इब्राहिम जो थे वो यहूदी थे, हालांकि यहूदी बने ही बाद में, हज़रत इब्राहिम बहुत पहले थे। ईसाई कहते थे हज़रत इब्राहिम कौन थे, ईसाई थे, हालांकि अल्लाह ने कहा हुआ तौरात तो थी नहीं, तुम कैसे कहते हो कि वो यहूदी हो गए। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और कहा कि तुम लोग तो शिर्क, तुमने तो दीन में तारीफ करके मुशरिक बन गए हो, इब्राहिम मुशरिकों में से
نہیں تھا. قولو, اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے, یعنی وہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی بنو یا عیسائی بنو, تم ان سے کیا کہو گے؟ یہ

यहूदी तुम कहते हो, यहूदी थे ईसाई कहते, यहूदी या ईसाई तुम ये कहते हो, तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह। काश कि ये हर उस बात को जवाब दिया जाए कि जो खिलाफ कुरान। और कोई बंदा कहे मैं जनाब यूं मैंने ख्वाब में देखा और मैंने यूं परवाज़ की और मैं ये चिड़िया पकड़ लाया, और आगे से उठ के लोग कहें कि तू सही कह रहा है, जो कुरान में लिखा है वो सही कह रहा है, तो फिर ये फैक्ट्रियाँ खुद बखुद बंद हो जाएंगी, वीरान हो जाएंगी। लेकिन जब कुरान नहीं पढ़ा जाएगा तो ये इसी तरह काम चलता रहेगा, खुराफात से मुआशरा भरा रहेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले पर। कह दीजिए तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह, और उससे बढ़कर जालिम कौन कि जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसको छुपा ले। यानी क्या तुम कह रहे हो यहूदी हो जाओ, तुम्हें पता है ये अल्लाह का रसूल है, तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास अमानत थी, तुम गवाही देते कि आ गया वो रसूल, तुमसे बड़ा तो जालिम ही कोई नहीं। उससे बढ़कर जालिम कौन जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से गवाही हो और वो उसे छुपा ले, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। तिल्क उम्मतुन कद खलत। फिर दोबारा तकरार हो रही है इस बात की, उसी फार्मूले की, कि ये उम्मत गुजर चुकी, उनके आमाल उनके लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, और तुमसे गुज़श्ता उम्मतों के बारे में, गुज़श्ता लोगों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। दूसरे जुज़ का कुरान करीम के आगाज़ हो रहा है, उसकी पहली आयत से, यानी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 142 से पहले तिलावत और फिर उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

तीन सलवात पढ़िए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 142 दूसरे जुज का आगाज है ये। रहमान रहीम अल्लाह के नाम से। लोगों में से कम अकल लोग ज़रूर कहेंगे जिस किबला की तरफ ये रुख किया करते थे उससे इन्हें किस चीज़ ने फेर दिया। कह दीजिए मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। अब आपको याद होगा वहाँ क्या कहा था, इसी बात से अटैच है वो बात, मशरिक और मगरिब अल्लाह के। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, सब समते अल्लाह की समते। बेवकूफ़ हैं जो कहेंगे किसने फेर दिया। जिसे चाहता है यहदी मैं यशा इला सिरात मुस्तकीम, जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमाता है। ये जिसे चाहता है मैं बयान कर चुका हूँ, यानी जो हठधर्मी ना करे फिर वो हिदायत पे आ जाता है, जो हठधर्मी करे खुदा उसको हिदायत भी नहीं देता। ये अल्लाह का कानून। वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और इस तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत बना दिया। उम्मत वसत बना दिया यानी अब तुम वो उम्मत हो कि जो फॉलो की जाएगी। अब कोई ये नहीं कहेगा हमारी बात सही है, अब पिछले अहकाम ख़त्म अंबिया के, अब रसूलुल्लाह की उम्मत के जो अहकाम हैं अब वो फॉलो किए जाएंगे। हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया। अगर कोई सीधे रास्ते पे चलना चाहता है तो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी इस्लाह करेगा। अल्लाह ताला ये जुमला बोलने पे मुझे माफ़ फरमाए, आज हमें देख के अपनी इस्लाह कर सकता है कोई, हमने जो अपने माशरे की हालत की हुई। हाँ अल्लाह ने ये फरमाया था कि हम तुम्हें वो उम्मत बना रहे हैं कि तुम उम्मत वसत, वसत कहते हैं दरमियान। दरमियान का मतलब क्या है, ना इधर से गुमराही ना इधर से गुमराही, ना लेफ्ट से ना राइट से ना किसी तरफ से टेढ़ापन हो, तुम उम्मत वसत। हमने क्या कर दिया, इस तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत करार दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। गवाह क्या बनो, कि तुम मौजूद थे, तुम अमल करते थे दीन पर, तुम लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे, लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अगर कोई क़यामत के दिन अल्लाह से कहेगा मुझे तो नहीं पता, तो उम्मत मुस्तफ़ा क्या कहेगी, हम दीन की तबलीग किया करते थे। अब पता नहीं वो उम्मत कहाँ है कि जो दीन की तबलीग करती है, अभी तो और काम बहुत उम्मत को पड़ गए। हमने तुम्हें उम्मत वसत ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे, और उम्मत पर फिर रसूल गवाही दें। रसूल क्या गवाही देंगे कि मैंने तुम्हें दीन पहुँचा दिया था। आखिरी हज पे सबको सामने अपनी उम्मत जो मौजूद थी उस वक्त उसे खिताब करके क्या पूछा था कि गवाही देते हो कि मैंने दीन खुदा तुम्हें पहुंचा दिया, सब ने कहा हम गवाही देते हैं आपने खुदा का दीन पहुंचा दिया। ये वो है ताकि तुम गवाही दो क़यामत के दिन और रसूल तुम पर गवाही दे। वमा जअलल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, और जिस किबले पर आप पहले थे उस किबले को हमने करार नहीं दिया था मगर इसलिए कि ताकि हम जाने कि जब किबला तब्दील होता है तो हम जाने कि कौन रसूल के पीछे चलता है और कौन उल्टे पैरों फिर जाता है दीन से। आजमाइश है, अल्लाह कह रहा है इधर मुंह तो इधर, उधर कह तो जिधर, अल्लाह के उधर मुंह करना है। यह नहीं कहना कि इधर था तो अब उधर क्यों हो गया, उधर था इधर जैसे मर्जी कर। इंपॉर्टेंट यह है कि जब पता चल जाए कि खुदा का हुक्म है, एक यह कि इंसान को पता ना हो, एक दफा पता चल गया कि अल्लाह का हुक्म यह है फिर कहना क्यों है भाई, इसको अभी अल्लाह ताला पर ईमान ही नहीं। रसूलुल्लाह ने यूं क्यों किया, ये रसूलुल्लाह पर एतराज के लिए, ये रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं रखता अगरचे आप अपने आप को जो मर्जी समझता रहे। आप जिस किबले की तरफ पहले रुख करते थे हमने उसे सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था ताकि हम रसूल की इत्तबा करने वालों को उल्टा फिर जाने वालों से पहचान लें, पहचान लें यानी अलग कर दे। और ये हुक्म अगरचे सख्त दुश्वार था मगर अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता लोगों के लिए नहीं था दुश्वार। यानी जो वाकई हिदायत याफ्ता थे उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, तो फौरन उसी नमाज में किबले का रुख तब्दील कर लिया था। नमाज पढ़ रहे थे रसूलुल्लाह, जहाँ पर मस

अब से पहला मैं हूं, कोई मुझसे पहले सबकत नहीं ले जा सकता। सबसे ज्यादा अल्लाह का इताअत गुजार, सबसे पहले इताअत करने वाला मैं हूं, सर झुकाने वाला मैं हूं। एक सलवात पढ़िए फिर मोहम्मद वाले। अगर जो इल्म आपके पास आ चुका है उसके बाद भी अगर आपने इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की तो आप ज्यादती करने वालों में से हो जाएंगे। जालिमीन का तर्जमा जुल्म भी जाहिर बात है ज्यादती होता है, आप ज्यादती करने वालों में से हो जाएंगे। अल्लदीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाअहुम। अब अल्लाह ताला रसूल पाक से कह रहे हैं देखें ये आपकी बात नहीं मानेंगे, जिनको हमने किताब दी है, ये ओवरऑल इंसानों से उस माशरे से किताब है, जिनको हमने किताब दी हुई है यानी तौरात दी हुई है, ये आपको ऐसे पहचान, ये रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर भी जब ये नहीं मान रहे तो तुम फिर और क्या चाहते हो, क्या किस तरह इनको ईमान पे लाओगे, इनको सब पता है इनको, लेकिन ये फिर भी अपनी हठधर्मी पर कायम। और इस आयत में फिर इशारा है उनके करप्ट उलमा का, यहूदियों के करप्ट उलमा का। क्या फरमाया, वह इन न फरीकम मिन हूं। ये खराबी की वजह क्या है इनकी, अच्छी तरह पता है वजह यह है कि यकीनन इन में से एक गिरोह ऐसा है लयक्तुमून अल हक, के जो हक को छुपाते हैं, नहीं चाहते कि हक वाजे हो। वहुम यालमून, जबकि उनको इल्म भी है कि ये बात सब की सब बरहक। जब जिस बंदे को हक पता हो और फिर वो छुपाए उसकी हिदायत कौन करेगा, जिसको नहीं रास्ता पता उसको तो कोई रास्ता दिखा दे तो वो तो बड़ा खुश होगा, शुक्र है मैं गलत जगह से सही जगह पे आ गया। जिसको रास्ता पता और वो गलत रास्ते पे चल रहा है उसको अगर उसने फिर हजार दलील घड़ी होती है अपने गलत रास्ते के लिए, उसको कह रहा कि ये रास्ता सही है, कहता चलो चलो तुम्हें ज्यादा पता है, हमें बेहतर पता तुम। अलहक मिन रब्बिक, अब अल्लाह फरमा रहा है, देखिए गौर से सुनिए, अब खुदा फरमा रहा है, फिर रहनुमाई फरमा रहा है कि वो कहेंगे हमें पता है हक का, आप कहिए हक वो है जो अल्लाह की तरफ से आता है। अलहक मिन रब्बिक, मेयार हक अल्लाह की बात है न किसी और की बात। फला तकूनन मिन अल मुमतरीन, हरगिज शक करने वालों में से ना हो जाए, यानी इसमें कभी शक ना करना कि हक अल्लाह की तरफ से होता है। तो लिहाजा अल्लाह की बात पहले ढूंढो, पहले अल्लाह की बात ढूंढो खुदा ने क्या कहा हुआ, उसके बाद फिर जो तुमने पीर मुरीद बनाए हुए उधर जाना, पहले अल्लाह की बात ढूंढो क्योंकि हक तो अल्लाह की तरफ से, इसमें शक ना करना। जो मर्जी लोग जोर लगाते रहे कि ये कुरान में यूं है तो फलान तो ऐसी बातें करते रहे, जो तुम देख लिया तुमने कि ये हक है उससे फिर शक ना करना। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा, अब यहां पे बड़ी बड़ी जुमानी बात की है, फरमाता है अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक के लिए एक तरफ है जिधर उसने रुख करना होता। अब बात जाहिर में किसकी हो रही है, यानी हर एक का एक किबला है, एक जहत है जिधर वो मुंह करता है, उनका किबला उधर तुम्हारा किबला उधर, और इसी के अंदर से अल्लाह एक और बड़ी खूबसूरत बात निकाल रहा है, क्या फस्तबिकुल खैरात, तुम्हारा किबला क्या होना चाहिए, नेकियों में सबकत ले जाओ, यानी ये नहीं कहा कि तुम्हारा किबला अब यहाँ पे काबा है, ठीक है वो तो हुक्म है अपनी जगह पर, इसके अंदर से एक और बात निकाली कि तुम्हारी जिंदगी का रुख किधर होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी देख के क्या लग नजर आए लोगों को, किधर तुम्हारा रुख है, लगे कि ये नेकियों में सबकत करने वाले, ना कि नेकियों की रेस में पीछे बैठे हुए होते, पता ही नहीं होता कि चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे। हर एक के लिए एक समत है जिस तरफ वो रुख करता है, बस तुम लोग नेकियों में सबकत करो, यानी तुम्हारी तुम्हारा रुख ये होना चाहिए, जहां कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको जमा कर देगा, यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यानी अगर तुम ये रविश अपना लो कि तुमने नेकियां करनी है तो खुदा तुम्हारी दूरियां भी खत्म कर दे। तुम नेकियां करने की जगह बहसें करते हो, बहस करते हो, बाल की खाल उतारते हो, तहकीकात रिसर्च करके लाते हो कि फिर और लड़ाई हो जाती है, नई नई बातें जो लड़ाइयां कराएं, हर साल नई नई इजादात करके लाते हैं, कहते हैं इससे पहले आपने नहीं सुना होगा, यानी ना कुरान में है ना हदीस में है, ये मैं इस साल बना के लाया हूं, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। और बाज तो लोगों वाकई अवाम भी अजीब होते हैं, डिमांड करते हैं इस दफा केवल

तुम्हें फ़ायदा लग रहा है चाहे ज़ाहिर में तुम्हें फ़ायदा नहीं लग रहा है। जैसे कुरान कहता है अभी इसी सूरह दूसरे पारे में आ जाएगा करीब, हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे हो तुम्हारे लिए बुरी, और हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ बुरी लग रही हो तुम्हारे लिए अच्छी, क्योंकि अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। लिहाजा अल्लाह पर एतमाद करो, अपने ऊपर अल्लाह के मुकाबले में एतमाद न करो, खता खाओगे। ताकि हम मैं अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दूं और ताकि तुम हिदायत पाओ, जैसे हमने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल को भेजा जो तुम्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाता है और तुम्हें पाकीज़ा करता है और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें उन चीज़ों की तालीम देता है जो तुम नहीं जानते थे। कितना अल्लाह के रसूल ने तुम, आप काफरों की हालत देखें इस कौम की रसूलुल्लाह से पहले और रसूलुल्लाह के कुछ अरसा बाद, ये पूरी दुनिया को लीड कर रहे थे, ये पूरी दुनिया को लीड कर रहे थे। एक ज़माना था कि ये जैसे यूरोप जिसके पीछे अब हम मर रहे होते हैं, ठीक है, वो लोग मुसलमानों को फॉलो करते थे, ये मुसलमान तरक्की दुनियावी तौर पर भी ये तरक्की याफ्ता था। यूरोप की तो डार्क एजेस चल रही थी, ये दीन था। अल्लाह फरमा रहे कि तुम्हें वो सिखाया जो तुम नहीं इल्म नहीं रखते थे, और फिर दीन के साथ जो हमने सलूक किया अल्लाह ताला ने भी वही सलूक किया जो करता है, वो उसकी सुन्नत में तब्दीली नहीं होती। तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें उन चीज़ों की तालीम देता है कि जिनको तुम नहीं जानते थे। बस फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँ। एक हम तर्जमा करते हैं तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ, और जिक्र से हमारे जहन में क्या आता है, मसलन मैं आपसे जिक्र करूँ। जिक्र का अरबी में ये माना नहीं है, असल माना क्या है, याद रखना अल्लाह, ठीक है ना। मसलन आप यहाँ से चले गए, आप जुदा हो गए बच्चों से, कहीं जॉब करने के सिलसिले में या कारोबारी से, आपको एक महीना कहीं किसी दूर मुल्क में जाना था, तो आप जब भी बच्चों को फ़ोन करते क्या कहते हैं, हर वक्त तुम मुझे याद आते हो, जहाँ भी हूँ मैं मेरे जहन में तुम होते। ये होता है जिक्र, ये एक्चुअली जिक्र, ये जिक्र ये नहीं है कि तस्बीह पढ़ रहा हूँ बंदा और दिमाग जो है वो आगे प्लानिंग कर रहा हूँ, ये जिक्र ये बस बेरू जिक्र है। फज़कुरूनी, मुझे याद रखो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद रखूँ, क्या मतलब, वो जो याद रखने वालों को मैं रहमतें देता हूँ वो तुम्हें दूंगा, वरना अल्लाह तो कुछ भी नहीं भूलता। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, ना मेरा रब भटकता है चूकता है ना भूलता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जैसे अल्लाह कहता है ना उन्होंने मकर किया तो अल्लाह ने किया, अल्लाह मकर नहीं करता, अल्लाह जवाब देता है मकर वालों को, सजा देता है उसको खुदा मकर करता। इसी तरह तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें भूल जाऊँगा, अल्लाह भूलता ही नहीं है, लेकिन तुम मुझे याद रखोगे, याद रखने वालों के लिए जो मैंने इनाम रखा है जो रहमतें रखी है वो मैं तुम्हें दूंगा। वश्कुरूली, और मेरे शुक्र गुजार बनो। वला तकफुरून, देखिए एक कुफ्र शुक्र के मुकाबले में आता है, मेरे शुक्र गुजार बनो, मेरी नेमतों का कुफरान करने वाले न बनो। ना कुफरान नेमत को हम ना शुक्री से तर्जुमा इसका करते हैं। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र, ये रोज़ा सब्र सिखाने के लिए, रोज़ा सब्र सिखाने वाला, बेसब्रा बंदा अच्छा भी नहीं लगता, जिससे थोड़ा बर्दाश्त, मतलब आप सफ़र पे जा रहे हैं ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ एक बंदा पीटना शुरू हो जाए, मैं मर गया बस रोको ये हो गया फलान, सारे लोगों को वो जलील करके रख दिए, बेसब्रा होता। सब्र वाला क्या करता है, बर्दाश्त करता है, बस एक हद तक जितना सब्र इंसान ने अपने अंदर सब्र पैदा किया है वो आजमाइशों में साबित कदम रहेगा। अलग ये सब्र से मदद लो, और ये रोज़ा किस लिए है, बल्कि रिवायात में कहा गया यहाँ सब्र से मुराद रोज़ा, यदि मुराद रोज़ा, अगर सिर्फ रोज़ा मुराद होता तो अल्लाह कहता फरमाता कि रोज़े से और नमाज से मदद लो, लेकिन सब्र से मुराद सब्र ही है, लेकिन चूंकि रोज़ा सब्र सिखाता है, एक बहुत बड़ा सब्र का नमूना है रोज़ा, लिहाजा रिवायात में कहा गया कि यहाँ मुराद मसलन, यानी एक बड़ी मुराद इससे रोज़ा है कि रोज़े से इंसान अपने अंदर सब्र की ताकत बढ़ा लेता है। सब्र से और नमाज से मदद लो, नमाज से मदद कैसे होती है कि खुदा से जब राबता बढ़ जाता है, इंसान जब कहता है मेरा इतनी बड़ी हस्ती से राबता है, उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। मैं मजाक से मिसाल दिया करता हूँ कि बाज़ लोगों का अगर इलाके के किसी ASI से SHO से दोस्ती हो जाए ना
वो अकड़ के चलता फिरता है, और दूसरा कहता है

कोई काम हो तो बताना, SHO साहब अपने यार, ठीक है ना, कोई मसला हो तो मुझे बताना, फील करता ताकत। तो नमाज अल्लाह से रब्ता है, तो अल्लाह से रब्ता क्या करेगा, अल्लाह फरमा रहा है इस नमाज से मदद लो, यानी तुम्हें स्ट्रेंथ देगी नमाज, फिर तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा, तुम अल्लाह के अलावा किसी के आगे इजहार मोहताजी नहीं करोगे। दुनिया कायनात की सबसे ताकतवर हस्ती के साथ जब तुम्हारा रब्ता है तो फिर तो मसला ही खत्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज से और सब्र से मदद लो, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, साबिरों के लिए खुशखबरी क्या है, अल्लाह उनके साथ है, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। परवरदिगार आलम हम सब को कुरान मजीद बेहक मोहम्मद व आल मोहम्मद और बेहक के कुरान करीम, परवरदिगार हम सब को कुरान मजीद पढ़ने सुनने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।